0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समित यो चौदह क्या में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुही खाता दिखाई अमरो खाई खाई बाहु
2: कोई लोटर बढ़ दिलवा
3: आंगी समित यो लोटी पढ़ी हूँ छापता ही गुदी
2: बढ़ दिया बढ़ दिवा लोटर खाले पढ़ दिवा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
5: यमहा बेस्ट एक्सचेंज अझै ज्यादा अझै धेरै यही असार सात गते देखि 12 गते सम्म स्थान वालिङ 8 मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडि यमहा लैजाऊ घरमा नागरिकताकै भरमा 2 वर्ष ट्याक्स फ्री राइड फ्री अट्र्याक्टिभ क्यास डिस्काउन्ट हाई भ्यालु एडिसन फ्री हेलमेट स्पट एक्सचेन्ज इजी फाइनान्स थप जानकारीको लागि सुलोसन अटो सेल्स वालिङ 10 भकुन्डे सम्पर्क मोबाइल 98560-86143
0: रेडियो आदि खुला 105.4

एसएस आधिक फ्लाक हबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: पहले हम लोग अनिमा 9 बजे था।
1: इस समय को साथ में जितु सुनचांदी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।
3: रेडियो आदि खोला 105.4

दिन कसैलाई चुनी चुनी सधैँ परि हाम्रो माया अदम बढी जहाँ चाहौँ जता चाहौँ तिम्रो छाया वरिपरि मात्र लुकको तालमा कम्बर पाछि नाचिदिउला सङ्गीतको छालमा कम्बर जस्तै पखिदिउला।

एसएस आदि फ्लाग खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सैंजा